0: दशमपहा अनुतुनाय दशमहाता लखंड रेडियो आईटीएन सभे श्रीलंकीय हंड
1: विलाव पासरु देखाई
2: विलाव उपवित गिनाव।